मयस्कृधि कृधिमयो मयस्कृधि क्षयद्वीराय क्षयद्वीराय कृधिमयो मयस्कृधि क्षयद्वीराय कृधि क्षयद्वीराय।